0: ये है Laika Radio. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
1: गारंटेड.
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
1: फोन 02085748410.
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: इट्स हियर. Laika Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Laika Radio in Birmingham is a part of Laika, London's number one Asian commercial radio group.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
2: Radio Wally takes you on a journey...

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पका

0: This is Leica Radio.
1: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपना के इसे हमेशा याद रखना।
2: काश कोई आ जाए उन्हें समझाए।
0: Usayoni, every day at 6 PM on Star Plus. And watch anytime on Jio Hotstar.
3: London, get ready for an unforgettable night.
4: Yes,

0: फ्री माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
1: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
2: Use your brain now. Play the game now.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

मत ताने, ओ जानी जरा नजरें मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

आना ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

0: गुड मॉर्निंग, रवि जी की आवाज आज फीमेल वॉइस हो गई है और ये फीमेल वॉइस है कौन? तो भाई मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रवि जी टुडे। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ। इट्स वेंसडे, बुधवार 30th of September एंड 30th of September की इस मिड मॉर्निंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत। 3 घंटों में मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन होगा। अश्विनी आ गई तो अश्विनी के स्टाइल में जो यहाँ पे होती है मस्ती वो रहेगी, लेकिन स्पेशली हमारा चिंतन, बहुत ही सुंदर चिंतन आप सबके लिए लेके आई हूँ, तो जरूर साथ देते चलिएगा। अब शो का आरंभ करते हैं, जितने भी बेलिया हैं उन सब के लिए हमारी तरफ से ये गीत।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. London, Midlands, Manchester. This is the Like a Radio Network.

चलिए मिलाने के एक बार घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है तो 10:28 हो चुके हैं आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लेस्टर मेरा नाम है अश्विनी आई एम सिटिंग इन फॉर रवि जी सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक 30 सितंबर बुधवार आपका मेरा साथ और जरा बात कर लेते हैं हेडलाइंस को लेके तो क्या चल रहा है दुनिया जहां में दुबई इजराइल फ्लाइट में लड़ बैठे दो पायलट हाईजैक की सूचना पर भेजने पड़े फाइटर जेट्स पीएम ने की इमरजेंसी मीटिंग भारत की बात की जाए तो न्यानीश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव एसआईआर के मुद्दे पर हुई आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लेकिन 24 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत भी नहीं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकेंड ओडीआई शुरू हो चुका है एंड इंडिया ने चूज की है फील्डिंग वेस्ट इंडीज ने खेलना शुरू कर दिया है उनका 50 ओवर में अभी जो है वहां पे बैटिंग चल रही है और आपको लाइव अपडेट भी जरूर बताएंगे कि क्या चल रहा है वहां पे एंड स्कोर अभी क्या है तो वेस्ट इंडीज है एक विकेट के नुकसान पे 110 रन बना चुका है ऐसे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और साथ में अगर मनोरंजन की बात करें तो लाल बाल काला चश्मा और चेहरे पर मुस्कान लिए भारत लौटी ऐश्वर्या की और फैंस को खुश अंदाज ऐसा है कि तारीफ हो रही है सो ये जो है आज के हैं हेडलाइंस और अब हम इस शो में बढ़ेंगे आगे

0: चलिए भाई, सुबह से सवेरे आप सभी जो हैं अपने काम काज निपटा के रेडियो के पास आके बैठे हैं या रेडियो को अपने काम काज में इंक्लूड कर रहे हैं, तो मनोरंजन की जिम्मेदारी होती है आपके अपनी लाइका गोल पे। और आज मेरे नाजुक कांधों पे रवि जी के शो को कवर करने की तैयारी आ गई है। सो यस, आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अश्विनी। आज का सवाल आप सबके लिए तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा कि बिना असाइनमेंट के आप लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे दो टीम्स बन रही हैं और आप कौन सी टीम में हैं जरा जरूर बताइएगा। पहले आवर में तो इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, चिंतन आने वाला है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, मन से भिड़ने वाला चिंतन आप सबके लिए मैं लेके हाजिर हुई हूँ। सो दो टीम्स कौन सी है, पोहा विथ नमकीन या बिरयानी विथ रायता? आप कौन सी टीम के लिए वोट करना चाहते हैं, पोहा विथ नमकीन या फिर बिरयानी विद रायता? आई नो लोग तो जीने के लिए खाते हैं, मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, तो फूड वाला सवाल डेफिनेटली आएगा। माय नेम इज अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रवि जी।
1: लाइक अ रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 020-8574-8410. Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
1: जी गुड मॉर्निंग. लंदन में जो हमें सुन रहे हैं, लेस्टर में जो सुन रहे हैं, अराउंड द ग्लोब जो हमें सुन रहे हैं, तो आप सभी की मिड मॉर्निंग हो चुकी है. एंड क्या आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे जेन्युइनली वो स्माइल नहीं करती हैं, वार्म अप फील नहीं करते, और अराउंड 11:16 से जो है मूड जो है वो मतलब उत्साह नहीं रहता है, और चीज़ें चल रही हैं तो बस चल रही हैं, ऐसा भी हो जाता है. नाउ मार्केट रिसर्च एंड मूड सर्वे रिपोर्ट्स दैट द एवरेज पर्सन विल नॉट क्रैक अ जेन्यून नॉन वर्क रिलेटेड स्माइल और फील फुली अपडेट अंटिल प्रिसाइजली 11:16 तक. तो 11:16 तक का ये जो मुहूर्त है जहाँ पे लोग आपकी तरफ देख के अगर स्माइल नहीं करते तो इट्स ओके, समझ लीजिए कि ऐसा होता है. योर बॉडीज नेचुरल स्ट्रेस एंड अलर्टनेस हॉर्मोन कॉर्टिसोल पीक अबाउट 30 आफ्टर यू वेक अप. तो ये सुबह का समय जो होता है ना, 11 तक आपकी बैटरी होती है चार्ज अगर ऐसा कहा जाए तो, जो नॉर्मल भाषा में आपको और मुझे समझ में आता है, वही ये चीज़ है बिल्कुल, कि अपने आप को लोग जो हैं वो सुबह के लिए प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि मुझे आज सुबह अचानक बताया गया कि आई हैव टू कवर रवि जी, आई एम लाइक वो मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी समय बाद आप सबसे फिर से मुलाकात होने वाली है. जी हाँ, प्लेजेंट सरप्राइज़ है आपके लिए और मेरे लिए बहुत प्यारा ख्याल रहता है जब मैं यहाँ पे आपके साथ में आके गपशप करती हूँ. तो आज का असाइनमेंट क्या चल रहा है फर्स्ट आवर का, भूलिए नहीं. मैंने पूछा है आपको कि आप कौन सी टीम में हैं, पोहा विद नमकीन या बिरयानी विद रायता. आई हाय, कितनी मतलब इतने फूड के शौकीन हैं, हिंदी में कहा जाए तो चटोरे जो होते हैं लोग, खाने के शौकीन जो होते हैं, मुझे दिख पड़ रहा है इतनी लंबी लिस्ट लोगों की आ रही है और फटाफट लोग अपनी अपनी चॉइसेस बता रहे हैं, इज इट पोहा और इज इट बिरयानी.
0: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
2: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash and Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal Diwali Gala 2026.
6: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
5: Adults £30, children aged 5 to 12 just £15 and under 5s go free.
6: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
5: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner Leica Radio.
7: Yes, we're in the final.
8: I know. I still can't believe it. We're actually going.
9: Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
10: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
10: Come on, let's go win this.
11: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.

0: Mica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127.12 इंडियन रुपी, 85.16 अफगान अफगानी, 367.29 पाकिस्तानी रुपी, 163.44 बांग्लादेशी टाका, 438.98 श्रीलंकन रुपी, 172.13 केनियन शिलिंग, 1.32 यूएस डॉलर्स, 63.34 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £101.48 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
1: चलिए एक बार मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 10. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड इन लेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर रवि जी टुडे एंड ओनली टुडे. सो आप मेरी आवाज़ सुनने वाले हैं दोपहर 1 बजे तक. सितंबर महीना ख़त्म हो चुका है एंड सरप्राइजिंगली हम लोग अनयूजुअली बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार सह रहे हैं एंड टेम्परेचर्स जो हैं जितना वार्मथ अभी हम फील कर रहे हैं दिस इज़ हिस्टोरिक एंड इट्स अनयूजुअल बिकॉज इसके पहले कभी भी टेम्परेचर्स इस तरीके की नहीं

0: है कि 24 से 28 डिग्री तक ये जो टेम्परेचर खेला जा रहा है फिलहाल, ये हमने कभी महसूस नहीं किया, पहले एक्सपीरियंस नहीं किया. रफली 3-7 डिग्रीज अबव द सीजनल एवरेज ये चल रहा है. वेल, ये क्यों हो रहा है? तो इट इज द सडन लेट सितंबर ब्लास्ट इज ड्रिवन बाय अ डीप लो प्रेशर सिस्टम इन द एटलांटिक पुलिंग हॉट एयर ओवर द कॉन्टिनेंटल यूरोप. सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो बस ग्लोबल वार्मिंग की ये जो हमें शिक्षा मिल रही है, है ना, वी आर बेसिकली वी आर पेइंग फॉर व्हाट वी हैव डन. लेकिन आई होप कि जल्दी जो है वेदर नॉर्मल हो जाए और साथ में आप और हम फिर से हमारा जो सुहाना मौसम होता है यूके में वो एक्सपीरियंस कर पाए. इस आवर का आखिरी गीत आपको सुना रही हूँ लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में, आन मिलो सजना से. सेकेंड आवर में तैयार रहिएगा चिंतन.
1: ये है लाइका रेडियो. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: It's back. It's bigger and better.
1: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
1: Join us on Sunday the 1st of November from 12 PM up until 8 PM at the Ram Gariya Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
1: For store bookings, call 07803-240-580
2: or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
3: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.

नमस्कार, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है आप सभी इस सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लेस्टर में। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम कवरिंग रवि जी टुडे। 11:04 चिंतन का समय। हम सभी हर रोज चिंतन सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। चिंतन यहाँ पे जो कहानियां सुनाई जाती हैं और जो एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे दिल में रहते हैं और हमें विचार करने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं कि हम जिंदगी में कहाँ हैं, हमारे रिश्तों में हम कहाँ हैं। ऐसे ही एक बड़े प्यारे रिश्ते की बात चिंतन में करने जा रही हूँ। तो कहानी है एक छोटे गाँव की और इस गाँव में मोस्ट ऑफ द लोग, जितने वहां पे लोग रहते थे, खेत खलिहानों में जाके काम किया करते थे। अब जब सभी फार्मर्स थे, मोस्ट ऑफ द जितने लोग वहां पे रहते थे, तो जब खेत में गए हैं, खलिहान में गए हैं, तो सुबह से जाते और शाम तक आते, तो जाहिर है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वो साथ में लेके जाते। ऐसे ही बहुत सारी माँ, बहुत सारे पिताजी अपने अपने छोटे बच्चों को लेके सारे कपल्स खेतों में गए, सबने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे दोपहर के खाने के बाद सारे बच्चे जो हैं अलग अलग जगह खेलने लगे। एक छोटी बच्ची खेलते खेलते एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत पहुंच गई और वो चौथे खेत की तरफ खेलते हुए जा रही थी और उसे ध्यान में आया कि वो इन खेतों में कहीं गुम हो गई है। वो पलट के देखने लगी कि उसकी माँ कहाँ पे है। अब वो दौड़ने लगी, भागने लगी, आसपास के लोगों के जाके चेहरे देखने लगे, क्योंकि कई लोगों के कपड़े भी सिमिलर थे जो उसकी मम्मी ने पहने थे। वो देख रही है, घूम रही है। अब उसे चिंता होने लगी, उसे रुलाई छूटने लगी और वो लोगों के पास जाके कहने लगी कि मेरी माँ कहाँ पे है, मेरी माँ कहाँ पे, मैं तो अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। और आसपास जितने लोग थे उन्हें भी चिंता होने लगी, वो भी चिल्ला चिल्ला के पूछने लगे, अरे किसी की बच्ची खोई है यहाँ पे, किसी की बच्ची खोई है, आइए अपनी बच्ची को यहाँ पे लेके जाइए, ये हमारे साथ है। फिर कुछ विद्वानों ने सोचा कि इतने सारे खेत लग गए हैं तो न जाने वो अपनी माँ को ढूंढ पाएगी या नहीं, चले हम भी इसे मदद कर देते हैं। उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? तो बच्ची कहती, मेरी माँ तो सबसे खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि उसके जैसे तो कोई सुंदर है ही नहीं। तो लोग कहते हैं, अच्छा दिखती कैसी? वो कहती, सबसे सुंदर मेरी माँ है, देखो आप जाओ, आप जाइए, आप ढूंढना शुरू कीजिए मेरी मम्मी को, मेरी माता जी को ढूंढना शुरू कीजिए, वो आपको मिल जाएंगी क्योंकि वो सबसे सुंदर है। अब धीरे धीरे धीरे धीरे ये बात लोग आपस में कह के दूसरे को मैसेज देने लगे कि भाई देखो जो सबसे सुंदर महिला होगी ना यहाँ पे इन 2-3 खेतों में, उन्हें लेके आई, उनकी बच्ची यहाँ पे है। सब एक दूसरे को ये कहते रहे। मीनवाइल जो महिला है जिनकी बेटी खो गई थी वो वहाँ पे चिंतित हो गई क्योंकि उन्हें उनकी बेटी नहीं दिख रही थी, वो भी दौड़ भाग के अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। सब लोग जो हैं अब एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत दौड़ के भागने पहुँचने लगे कि इस बच्ची की माँ कहाँ है, और माँ ढूंढने लगी कि मेरी बच्ची कहाँ पे है। फाइनली एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो बच्ची जाके एक औरत से लिपटती है और लोग जाके कहते हैं कि अरे तुम कौन हो भाई, ये तो इसकी माँ को ढूंढ रही थी क्योंकि कह रही थी कि इसकी माँ सबसे सुंदर है, हटो हटो ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये तो किसी और की बच्ची है। तो बच्ची कहती, यही तो मेरी माँ है। और जब सारे लोग उसकी माँ की तरफ देखते हैं तो खूबसूरती का एक अंश उस औरत में नहीं होता, बड़ी ही डार्कर साइड उनकी स्किन रहती है, स्किन का टेक्सचर भी कुछ खास नहीं होता है, कुछ चेचक के दाग से उनके चेहरे पे होते हैं, उनकी आंखें भी छोटी होती, मतलब खूबसूरत और ब्यूटीफुल जिसे कहा जाए वो कहीं पे भी उसके आसपास नहीं होता। तो लोग बच्ची से कहते हैं कि बेटा तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ तो सबसे खूबसूरत है, देखो हम तो उनको ढूंढ रहे थे। तो वो बच्ची सबको कहती है, आप मेरी माँ को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। हाँ, इनके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, इनका जो कलर है, इनकी जो आँखें, शायद आपके लिए खूबसूरत ना हो लेकिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत हैं। और बस यही आज का आपका और मेरा चिंतन है। माँ तो माँ है ना, सबसे सुंदर होती है, सबके लिए होती है और बे इंतहा सेल्फलेस प्यार हम पे कोई करती है ना तो वो होती है हमारी माँ। माँ खूबसूरत होती है
वो कितनी सुंदर दिखती हैं, कितनी गोरी हैं, कैसा टेक्सचर, नहीं मायने रखता किसी बच्चे के लिए, क्योंकि उनके लिए उनका माँ उनका जहाँ होता है। तो अगर आपकी माँ है और आपने बहुत दिनों से बात नहीं की तो उठाइए फ़ोन, बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में उनकी माँ नहीं है। अपने रिश्तों को अहमियत दीजिए, काम काज चलता रहेगा। बस एक लाइन बोलने में कितना टाइम लगता है, कैसी हो बस याद आ गई, है ना। चलिए, कैसा लगा चिंतन ज़रूर बताइएगा। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, आप सबको सुनाना चाहूँगी, राजा और रंग से। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टू माई लेट मदर अंजलि, उनके लिए गीत। आप भी सुनिए एंड बताइए आपको चिंतन कैसा लगा।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coco Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ, 11:24 जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड इन लेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रवि जी टुडे एंड ओनली टुडे. वेंसडे, वन ऑफ माय फेवरेट डेज इन द वीक. और मिड वीक जब हम आ जाते हैं तो दो दिन इधर दो दिन उधर, तो मौसम जो है हमारे मन का बड़ा सुहाना हो जाता है. आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में जवानी दीवानी से सुनाया था ये ट्रैक. नेक्स्ट ट्रैक थोड़ा फास्ट होगा, मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ काम जो है वो हमने स्पीड में कर लेना चाहिए था तो अभी इस गाने के साथ में कर लो, क्योंकि ये ना बहुत फास्ट होने वाला है. एंड साथ में आप और मैं बात करने वाले हैं अबाउट द इंडियन स्पाइसेस, जो एक हमारा डिब्बा होता है जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, तो ये हमारी रोज़मर्रा के फूड में जब हम ऐड करते हैं तो इनका क्या बेनिफिट है हमारे हेल्थ पे, बात करेंगे इसके बारे में. लेकिन उसके पहले आशा भोसले की आवाज़ में एक फूल दो माली से सजना सजना
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: कहा था ना मैंने कि इतना फास्ट ट्रैक है कि तो जल्दी जल्दी काम करना है ना, तो इसमें इतना स्पीड में आशा जी ने जो गाया है एक फूल दो माली, विच वाज रिलीज इन 1969, उस फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। सो जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड इन लेस्टर एंड अराउंड द ग्लोब। माई नेम इज अश्विनी और मैं आज रवि जी को कवर कर रही हूँ सुबह 10 से लेकर दोपहर 1 बजे तक। सेकेंड आवर के आधा सफर भी हमने कर लिया, सेकंड आवर की नहीं, सेकंड आवर का आधा सफर हमने कर लिया है। सो टीम पोहा विथ नमकीन एंड टीम बिरयानी विथ रायता, कंग्रेचुलेशंस सबसे पहले। मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, कंग्रेचुलेशंस इसलिए कि आपको अपनी अपनी चॉइसेस पता है। बहुत बार होता है ना कि लोगों से पूछो क्या अच्छा लगता है, कुछ भी खा लेते हैं हम तो ऐसा थोड़ी है भाई, हमें अपनी अपनी चॉइसेस पता होनी चाहिए। सो यस, आई एम टीम पोहा विथ नमकीन, अ बिग फैन ऑफ पोहा। सो बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंदौर, तो ना इंदौरी लोग जो होते हैं मध्य प्रदेश के पोहे के पीछे ना वो दीवाने होते हैं, एंड बींग अ महाराष्ट्रियन एज वेल, सो यू नो वो तड़के पे तड़का हो जाता है उस चीज़ का। सो यस, अब जब मैंने पूछा पोहा विथ नमकीन तो उसमें भी वेरिएशन आने लगी, सब लोग बताने लगे कि फिर पोहे पे थोड़ा सा कोकोनट भी अगर है ना ऐसे ग्रेटेड कोकोनट डाला तो वो भी अच्छा लगता है, किसी ने कहा नींबू, इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। आप लोगों को सच में ध्यान भी नहीं आता कि हम स्टूडियो में यहाँ बैठे हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो सकते हैं। चलिए अगली गीत की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले अब जब खाने पीने की इतनी बात चल ही रही है तो थोड़ा हमारा नॉलेज जो है उसे हम बढ़ा दें। व्हेन इट कम्स टू द स्पाइसेस, जो एक मसाले मसाला दानी जो होती है उसके लिए, एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे रिगार्डिंग चिंतन। आप सभी ने कहा कि आज का चिंतन जो है उसने आप सबको भावुक बना दिया, आप सबकी आंखों में आंसू आ गए। जी आप सबको रुलाने का मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन देखिए माँ एक ऐसी व्यक्ति है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं, है ना, और जब उनके बारे में बातें होती हैं तो बहुत सहज है कि मन डोल उठता है ना, भावनाएं जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं, बिकॉज इतना असीम प्यार नहीं मिलता। सो जिनकी माएँ हैं तो बिल्कुल उनके साथ में मज़ा मस्ती गपशप इंटरेक्शन करते रहिए, और जो नहीं है अभी वो आप सबको देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ में है, तो दुखी ना हो, खुश होके जियो, खुल के जियो, क्योंकि वही आपकी माता जी भी चाहती होंगी। नाउ बैक टू मसाले दानी वाला डब्बा। यस, सो जो टर्मरिक हमारे यहाँ पे होती है, ब्राइट येलो कलर है जी, कितना सुंदर कलर होता है ना, मुझे कुछ कलर्स देख के खुशी हो जाती है। तो इसमें जो एक कंपाउंड है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें, जो आपके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जो लोग लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रेड चिली पाउडर जो होती है इट हेल्प्स बूस्ट मेटाबॉलिज्म, इट कंटेन्स कैप्सिन। अब इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं कि किसमें क्या है, लेकिन ये करता क्या है बेनिफिट उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गरम मसाला ये जो है इट सपोर्ट्स योर इम्यून हेल्थ एंड इजेस ब्लोटिंग एंड एड्स डाइजेशन। हिंग, हम जो हिंग भी डालते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर डाइजेशन। कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन धनिया पाउडर का ना एक अलग ही अट्रैक्शन है मुझे, मेरा बस चले तो मैं हर जगह धनिया पाउडर डाल दूं। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कूलिंग एजेंट फॉर द बॉडी एंड सपोर्ट्स डाइजेशन एंड असिस्ट इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। जीरा जो हम डालते हैं, आय हाय इसकी महक कितनी सुंदर होती है। सो इट स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसमें है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरसों राई, वो इतनी सी राई तड़तड़ तड़तड़ करके जब वो डांस करती है, हाँ बिल्कुल तड़का तैयार हो जाता है। इट इज़ रिच इन हेल्दी फैट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्टिम्युलेट्स एपिटाइट एंड सपोर्ट्स डाइजेस्टिव फंक्शन। सो कोई आपको कहे कि इतनी मसालेदानी क्यों चाहिए भैया आप लोगों को, ये एशियन लोग, ये सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ हम जो खाते हैं अपनी ज़िंदगी में एशियन लोग, तो हमारी हर खाने के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस दिए जाते हैं, और ऐसे रीजंस दिए जाते हैं जो आपकी हेल्थ को कैसे बेनिफिट करते हैं। सो भाई बनना है ना तो ज़रा नमक के जैसे बनिए, क्योंकि शुगर नहीं हो एक बार की तो चल जाए, लेकिन नमक को हम सब बहुत मिस करते हैं, क्या ख्याल है बताइए। दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: मस्त।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127.43 इंडियन रुपी, 85.32 अफगानी, 367.79 पाकिस्तानी रुपी, 163.61 बांग्लादेशी टाका, 439.77 श्रीलंकन रुपी, 172.42 केनियन शिलिंग, 1.32 US डॉलर्स, 63.44 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £101.28 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica
1: Radio. चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 11:50 मिड वीक एंड मिड मॉर्निंग शो. मेरा नाम है अश्विनी, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी. चल रहे हैं इस आवर के आखिरी गीत की तरफ. उसके पहले गीता दत्त एंड मोहम्मद रफी की आवाज़ में काला बाजार, विच वॉज रिलीज्ड इन 1960, उस फिल्म से रिमझिम के तराने. कितने खूबसूरत गीत, कितने खूबसूरत एहसास, कितनी खूबसूरत जो है वो शब्दावली होती है इन गीतों की. लिरिक्स का इफेक्ट हम पे होता है और जिस तरीके से हमारा मूड होता है उस तरीके से हम उन गीतों से रिलेट करते रहते हैं. सो इस आवर का आखिरी गीत, आहा, वन ऑफ माय फेवरेट्स, पिघलता आसमां, विच वॉज रिलीज्ड इन 1985, उस फिल्म से अलका याग्निक और किशोर कुमार की आवाज़ में, तेरी मेरी प्रेम कहानी. तो इसमें वो क्या इंस्ट्रूमेंट है मुझे पता नहीं, लेकिन टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, आई जस्ट लव दैट टिंग टिंग इट, है ना. सॉरी, माई नॉलेज इज लिमिटेड वैन इट कम्स टू सर्टन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन आई एम श्योर ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा. यही गीत हमें ले चल रहा है 12 o'clock की न्यूज की तरफ. उसके बाद आपका मेरा साथ और एक घंटे के लिए.
0: Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: क्या बात है, दो बड़े ही प्यारे गीतों के साथ में हमने इस तीसरे आवर का आगाज किया। वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द मॉर्निंग शो, रवि जी का मॉर्निंग शो होता है। मेरा नाम है अश्विनी, आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लेस्टर। आई एम सिटिंग इन फॉर रवि जी। सुबह 10 बजे आपका मेरा साथ शुरू हुआ, तो ब्रेकफास्ट तब तक शायद हो चुका था, अब लंच की तरफ आप और हम बढ़ते जा रहे हैं। बड़े दिल वाला विच वॉज रिलीज इन 1983, उस फिल्म से किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में कहो कैसे रास्ता भूल के सुनाया। सो 80s वाले बच्चे खुश, इतना तो याद है मुझे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में महबूब की मेहंदी से सुनाया गीत, तो 70s वाले बच्चे खुश, 60s वाले भी हो जाएंगे बिल्कुल। और इस आवर में बात करने वाले हैं थोड़ी सुपरमार्केट्स के बारे में। सुपरमार्केट्स आपके हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है, अब वो क्या नया कर रहे हैं हमारे लिए बताऊंगी आप सबको बस कुछ ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 126 इंडियन रुपी 80 पैसे। Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लेस्टर LE54UN।
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
5: लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर। 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट 5 pounds। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल फीचर 07957477330। मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
8: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे
10: ऑफिशियली London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
11: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
12: कुछ भी नहीं

0: कुछ भी नहीं। What a beautiful track. लता मंगेशकर की आवाज़ में अनुपमा फिल्म विच वॉज रिलीज इन 1966। इसी फिल्म से आपको सुनाया ये गीत। आर्टिस्ट ऑफ द वीक है कैफ़ी आज़मी, और कैफ़ी आज़मी जी की कलम जब चलती है तो ऐसे सुंदर और ठहराव वाले गीत सामने आते हैं। बिल्कुल लिरिक्स मायने रखते हैं, साथ में जो कंपोजर्स होते हैं, जिस तरीके का म्यूज़िक यूज़ होता है, इट्स जस्ट फ्लॉलेस। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स। अनुपमा फिल्म के सारे ही गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड मी बाय माई मदर, मेरी आई ने मुझे इस फिल्म के गीत सुनाए थे। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि थैंक यू जी, बहुत प्यारा गीत आपने सुनाया। सो आर्टिस्ट ऑफ द वीक ये जो फीचर है इसीलिए है कि जो चुनिंदा आर्टिस्ट ऑफ द वीक आप सबके लिए लाते हैं उन्हें सुन के आप कहें कि बस यही तो सुनना था, मज़ा आ गया। नेक्स्ट ट्रैक आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले ज़रा बात कर लेते हैं सुपरमार्केट्स के बारे में। हम सभी सुपरमार्केट्स में जाते हैं, ग्रॉसरीज पिकअप करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें लगती हैं हम उसके लिए सुपरमार्केट्स जाते हैं। तो सुपरमार्केट्स ने सोचा कि क्यों ना लोगों की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए थोड़े कुछ ऐसे चेंजेस लाए जहाँ पर उन्हें लगे कि दिस वॉज मेंट फॉर मी। सो एक डच सुपरमार्केट है जिन्होंने स्लो चेकआउट्स बनाए हैं फॉर लोनली एल्डरली पीपल जो किसी से बात करना चाहते हैं। कितना सुंदर है। आई वुड डेफिनेटली लव टू अप्लाई टू दैट सुपरमार्केट, या यहाँ पे ऐसे सुपरमार्केट खुले ना, आई वुड लव टू गो टू दैट सुपरमार्केट। अकेलापन, लोनलीनेस खा जाता है इंसान को और लगता है कि कोई हमें मिले बात करने के लिए, है ना। एंड आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे हमारे प्यारे लिसनर्स हैं जो आप रेडियोज इसलिए ट्यून करते हैं कि यहाँ पे जो गीत यहाँ पे आता है, संगीत आता है, वो आपको इतना अच्छा और पॉजिटिव मूड में रखता है कि कहीं ना कहीं ये जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। अ सुपर मार्केट इन फिनलैंड यूजेस पिंक बास्केट्स टू शो दैट समवन इज सिंगल एंड ओपन टू मीट somebody। क्या बात है, और एक बढ़िया तरीका टू शो कि रिलेशनशिप में ये भी एक चीज़ की जा सकती है। फ्रांस रिक्वायर्स लार्ज सुपरमार्केट्स टू डोनेट अनसोल्ड फूड टू चैरिटीज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, मच मच नीडेड दीज काइंड ऑफ एक्ट्स। एंड साथ में सुपरमार्केट इन थाईलैंड स्टार्टेड रैपिंग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन बनाना लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। सही मायने में बनाना लीव्स का और उपयोग हो रहा है। सुपरमार्केट्स इन ऑस्ट्रिया टर्न ऑफ म्यूजिक एंड अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग क्वाइट आवर्स टू मेक शॉपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ ऑटिज्म। नाउ दिस वॉज रियली थॉटफुल ऑफ देम। सो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हम अगर एक दूसरे के लिए करें, एंड वेन वी से कि हम ह्यूमन्स हैं तो स्टार्ट बींग लाइक अ ह्यूमन, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन, बहुत बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझना और ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना जहाँ पर हम दूसरों को कहीं हर्ट ना करें, है ना, अपनी ज़िंदगी जीते हुए। बिल्कुल कोई ज्ञान वाली बात नहीं, चिंतन हो चुका है सेकेंड आवर में, तो अगले गीत के लिए थोड़ा तैयार हो जाइए, वॉल्यूम अप करना है ज़रूर कर दीजिए। ये रात फिर ना आएगी 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में हुजूरे वाला हुआ। Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127.45 इंडियन रुपी, 85.34 अफगान अफगानी, 368.41 पाकिस्तानी रुपी, 163.54 बांग्लादेशी टाका, 439.46 श्रीलंकन रुपी, 172.44 केनियन शिलिंग, 1.32 यूएस डॉलर्स, 63.45 मॉरिशियन रुपी.
4: Like radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
3: Gold is currently trading at £101.28 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं एक बार ये टाइम कितना हुआ. इट्स 46 मिनट्स पास्ट 12. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन, लेस्टर एंड अराउंड द ग्लोब. माय नेम इज अश्विनी. आई वाज सिटिंग इन फॉर रवि जी टुडे. अब टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है कि भाई हमारे जो नेक्स्ट प्रेजेंटर है, हमारे अपने बाली जी, बस आएंगे स्टूडियो में, आपका मनोरंजन करेंगे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक. उसके बाद में आएंगे सैंडी जी और सैनी जी के बाद में आएंगे अनिसा जी. सो पूरा का पूरा दिन पैक्ड है विद मनोरंजन. सारे के सारे प्रेजेंटर्स आते हैं और आपका खूब मनोरंजन करते हैं. मैं ऐसे ही आती रहूँगी. आई विल बी कवरिंग एज एंड व्हेन नीडेड. बहुत अच्छा लगता है आप सबसे कनेक्ट करके ओवर द शो. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि देखिए प्यार बहुत खूबसूरत है. सो प्यार दो, प्यार लो. जिंदगी खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ. आपके जहन और मन में जो भी चीज़ें हैं बोल के दिखाइए, सामने वाले के समझ में नहीं आती है. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मिलूंगी जल्द लास्ट ट्रैक के साथ में. आपको कह रही हूँ बाय बाय.
5: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
6: Ye hai Leica Radio.
4: Leica Radio.
7: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
8: It's back, it's bigger and better.
7: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
8: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
7: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
8: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: For store bookings, call 07803-240580
8: or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

नेक्स्ट सॉन्ग सुनिएगा मुकेश जी का. Spiker Radio, part of the largest Asian commercial radio network in the UK. फिल्म है अनाड़ी.

0: And that is Geeta Bali, for whom Lata Mangeshkar has sung. Ajiba Shukriya, 1958. I hope you're enjoying the A to Z.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अच्छा एक लेडी हमारी सरोज जोशी फ्रॉम लूटन इन थोड़ी नाराज हो गई मुझसे इन्होंने मैंने कहा कि ई से कोई हीरोइन नहीं है जिसके लिए लता मंगेशकर ने गाया तो इन्होंने मुझे कहा ईशा डियोल ईशा गुप्ता तो मैंने कहा व्हाट अबाउट देम तो आई सेड आई बेग योर पार्डन तो बोलती यू डोंट हैव टू बैग मी तो मैंने कहा ओके आई एम नॉट बैगिंग बट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ईशा डियोल और ईशा गुप्ता So she's trying to tell me ke heroines hai E se. Lekin main keh raha hoon ke nahi. Kyunki Lata ji ne unke liye nahi gaya. Aur gaya hoga to 1999 ke baad. Kyunki inki film mein 2000 ke aage hain. Aur hum Laika Gold pe 1999 tak hi karte hain. Okay Saroj ji. And she got naraz and said goodbye. To maine kaha namaskaram. Okay, thank you very much. आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी हमको मिलते हैं listeners, पर no problem, you know, I can handle them. दूसरा गाना कौन सा होगा? We are getting from G to H. Hema Malini, next, very soon.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
0: Okay, we've got an announcement here. Catch the brand new game show, India ke Top 1%. Hosted by Anil Kapoor, every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar. Download and subscribe to the Jio Hotstar app now. Jio Hotstar is also available on Sky TV as an app.
1: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: Yes, we have come into L. That is Lakshmi. And the next one is Leela Naidu. And uske baad Leena Chandavarkar. Sunte jaiye.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: This is Leica Radio across the Midlands.
0: ये गाना फिल्म अनुराधा में लता मंगेशकर सैंग फॉर द हीरोइन लीला नायडू. वी आर ऑन टू अल्फाबेट एल एंड द नेक्स्ट वन इज लीना चंदावरकर. ऑफ कोर्स एच में हेलन मैंने किया नहीं क्योंकि कल मैं शुरुआत करूंगा विद हेलन एच एंड कल से एम लेटर शुरू होगा. नेक्स्ट वन लीना चंदावरकर.

0: Love this track, Likai Ye Hava Umpe, with Sunny D. All the Nose, which we each are playing that. And if you're dar. Wednesday drive. Do you know what? Tomorrow night is the start of Traitors. I'm going to be a complete couch potato. Ah, man. Got Big Brother. Big Boss, I'm watching kind of like in and out at the moment. I'm not keen on it. And then Traitors starting tomorrow. So looking forward to that. It's so good. Then Dragon's Den as well. Oh, man. Jasmine, you love this track. I'm so glad you did. Raggedy High. You found it a bit difficult today. Never get it wrong. Raggedy, what's going on? In my sequencer. Also, Ella going at two. A very sure lots of love to you as well. You got the answer right.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Don't forget some amazing deals with Southall Travel. If you think about going to Dubai, Southall Travel's affordable Dubai offer combines exclusive deals at selected partner hotels with direct flights with Emirates from just £629 per person for 3 nights. Travel by the 10th of December. T&Cs do apply. Call Southall Travel on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Raj Badden.
0: This topic that I asked you, my big question, it's definitely creating quite a stir about whether you would change your eating habits. Like, I don't know, turn vegetarian if your partner is vegetarian, or turn non-veg if your partner's non-veg. I had Virsha messaging me saying, I'm a vegetarian. My husband eats meat. He tends to compromise more by eating vegetarian food, but we go to restaurants that does both, so he doesn't miss out. And you know, Mahi sent me this lovely voice note as well. Mahi, thank you very much for getting in touch. In fact, it's going to make you smart. And it's in Hindi as well. Love your Hindi, Mahi.
2: Hello, good evening, Raj. कैसे हैं आप? माही here. और राज, अभी मैं आपका बस अभी मैंने लाइका रेडियो ऑन किया और आपके मैंने क्वेश्चन सुना और मैं सोच रही हूँ कि ये कहीं आपको मेरी बात तो नहीं पता चल गई, तो मुझे अपनी स्टोरी सुनानी होगी पार्टनर वाली कि क्या पसंद है और क्या छोड़ा और क्या नहीं. और बल्कि मैं स्टार्ट में ही कह दूँ कि कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊँ भाई. मेरे हस्बैंड जब बचपन में स्कूल वगैरह में थे, तो शायद इनके दोस्तों ने जो है वो कोई मजाक किया कि पानी से और मछलियाँ पकड़ के उसको थैली में डालकर उसकी स्मेल से जो है ना इनको जो है काफ़ी तंग किया. अब क्या हुआ एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड को फ़िश जो है ना, उसका फ़िश का नाम सुनना भी नहीं पसंद. तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बचपन से हमने तो अपनी फैमिली में फ़िश खाया था, बल्कि मैं बड़े शौक से खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को तो उसका नाम लेना नहीं पसंद. तो बस शादी के बाद भाई मैंने जो है वो फ़िश खाना छोड़ दी है. मैं भी नहीं खाती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते. अच्छा, घर के अंदर पकाना भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया. अगर गलती से आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, किसी बूफे में चले गए, और अगर आपने फ़िश देख ली है और आप जा रहे हो उस तरफ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे ही देख रहे होते हैं कि मैं सब जगह जा सकती हूँ, बस मैं फ़िश वाली जगह पे नहीं जाऊँगी. तो ये एक मेरे लिए है. तो भाई मैंने अपनी जो है उफ करते क्या ना करते अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है, और बस मैं अपने हस्बैंड की वजह से फ़िश नहीं खा पाती हूँ. ये है मेरी दुख भरी दास्तान.
0: दुख भरी इंडीड माही, बट यू नो व्हाट, वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दैट. I mean, I like your Hindi. I mean, Urdu, jo bhi hai na, I just love it. Thanks, Mahi, for getting in touch. So it's no fish for Mahi, but get in touch and let me know how much you've changed your lifestyle and your eating habits for your partner. Use your number. I'm on WhatsApp.
3: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप से लाइका रेडियो डॉट कॉम से एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो
1: पंजाबी। हाय दिस इज अक्षय कुमार। एंड यू आर लिसनिंग टू लाइका रेडियो।
2: Attention and name the film of this cracker classic.

0: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
3: गारंटीड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती लाके दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: द बॉय